चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तद भस्म तद धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही है, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तद भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममय वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा।
जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य, कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी, कहीं भी कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं, ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है, कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहता, कहते तो हमारा आज ये सौभाग्य न होता, कहां मैं कुलटागामी अपवित्र और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला,
पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें? शांति सुख आनंद तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो निशानी अब नान से, जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। हमारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा फिर वही, जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान सिंहदेव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन

करो, कोई भी सेकंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजे ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, यह चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन। एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना। ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल। नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का। नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। और दासोहम में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते। वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती। और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना एक नाम ने सत्य माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में ना परिचय होगा ना प्रीति होगी। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रु नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिले, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल से फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है। राधा

सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो। प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा, एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके, सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में, कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है, कुछ उसको इन सब विषयों को न पढ़ने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान के ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती है क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई, छोटा न समझो नाम को। इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है, एक अंकुश मार घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो, जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझनी। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट, कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जिस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे हुए, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं, या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो बहुत बेटर है उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है।
2: सक्सेस इज नॉट
1: हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में, वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहाँ पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मीन्स कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है, ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, तो उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे ही करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर सम अप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं,

0: भी मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो अब गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, छोटा छोटी सोच, छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना। बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना? मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है, और कंफर्ट की वैल्यू है, पर उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है। खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं है, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए, तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से। मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है। जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके इंप्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई, समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है? तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है? या ये कह लो कि ये एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है?
1: Yes.
0: वो मर सकता है इंसान?
1: Yes. Yes.
0: तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा? तो जहां डर होता है, जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं कोई डर नहीं है, पर जितना ज्यादा आपको खुशी मिल रही होती है उस इंसान के साथ में, ये सोच के तो आप खुश हो रहे हो ना कि हाँ हो गया हो गया हो गया, मतलब यही आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा? और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना? तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन मैं घर में आया, मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं, मैं दुखी हूं। तो जिसको आप खुशी कह रहे हो

0: वहां पर तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है। और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज हो करके, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशन में टच कर चुका हूँ कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। एडिक्ट हो जाते हैं हम, दोज आर मोर लाइक एस्केप्स। जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से। मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स हैं। इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई या उससे बोर हो गए या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं, ये क्या किया है तूने होता है नहीं होता है हा? और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है। जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है, पता है आप लोगों को आइडिया है? हाँ, आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है। तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए। नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में, जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, ये थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दूपंती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा, आ हा हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया, जैसे चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है। जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो, क्यों? क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है,
1: लोगों के कमेंट्स,
0: या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं ना, फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ठीक था मैं तो। तो सुंदरता कहां है, बाहर है अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। एब्स है, ये है, वो है, फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। यही दुनिया की कहानी है, दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो, किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, बच्चे तो हो नहीं आप लोग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में, सब कुछ रहता है रहे जाता है चला जाए। ये नहीं कर सकते इसका डर में जी रहे हो ना। आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती, ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं, कुछ भी कर लो वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आरसेल्व्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान हैं। आप कभी पहाड़ों पे अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो किसी हिल स्टेशन पे, वहां जाकर के देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, यही सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूं, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ बाहर में गई दुनिया तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेंगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में चार पांच लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ अभी तक तो एज हो गई मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को मैं एज इट इज देख रहे हैं, सोच रहे हो ना ये वो ये, एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है, वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट, कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक ही एक सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में एक सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है, वो फेलियर में 1 सेकंड का फर्क है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में 1 सेकंड का फर्क है, ठीक है ना? जैसे वो बदला, थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के, मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े। थॉट से किसको जोड़े? कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा, खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं आए, बुरा नहीं है, वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है। खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा, हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में, जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपका टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए। हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा, तो जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे हो गए? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल। तो अब क्या करें, कैसे खुश होएं? क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है। देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है। जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते, पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो। खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है, करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश हो गए? बिना करे, सब कुछ अपने आप होता रहा है, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? वी डोंट नीड थॉट टू बी हैप्पी। ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है, अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा। अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो सुबह से रात तक? वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर रहे, क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो, ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो और पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई? कुछ भी हो जाए ब्रेथ तो फिर भी चलेगी, और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं, मेरे होने के ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं, इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कब ये देख सकते हो कि अगर आप अपने घर की छत पे लेटे हुए हो और ऊपर बादलों की तरफ देख रहे हो, तो कब इस सच को आप एज इट इज देख सकते हो और समझ सकते हो कि सब कुछ मुझ में है?
1: Thoughtless mind is key of happiness.
0: Thoughtless mind is key for happiness, but what is thoughtless mind? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर। तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो, दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे, बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्या घोचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं, डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो, बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है। गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गानों को सुनने को तैयार नहीं है आपका, करो क्या करोगे, हो गए ना दुखी। आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है। हम क्या गलती कर रहे हैं, अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है, यही कर रहे हो आप गलतियां। क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं। तो डर लगता है ना, मेरे से ये चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो गुलाम नहीं हो आप चीजों के। सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो, खेतों में चले जाओ जाके, बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, गाना खिला देगा, हाँ डीजे खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए, आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट, एज मच एज आई कैन, एट द सेम टाइम आई हैव द कैपेसिटी टू लिव विदाउट मनी। फियरलेस हो गए ना। ये दो एक्सट्रीम होती हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है। ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी भी आंखों में डर नजर आता है, पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए। तो कैसा अपने आप को बना दो, एक तरफ से वो कैसे बनेगा, थॉट से बनेगा, और कैसे बनेगा, मतलब खुश रहेंगे तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी। थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया, वो किया, वो किस लिए कर रहे हो आप? अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया में बहुत तरह के लोग, देख लिए हर तरह के, देख लिए वो भी, देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो कहां है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये समझने में है कि जो थॉट्स है इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बस। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थॉट जरूरी है, आपका समझदार होना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे, बस इतनी सी जरूरत है। इतना अगर हमको समझ आ जाए तो क्या होगा, दिन में मानो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपने काम किया उस वक्त तो पूरी तरह से थॉट को यूज किया अपने आप को कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया, थॉट को छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो। थॉट की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप देखोगे किसी को भी तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस शानदार ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी की हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.

0: making love so nice.
1: सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

इंसान के पास भी एक हिडन थड़ाई हो सकती है। कभी सोचा है इस बारे में? वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम बात करें एक हिडन थर्ड आई की। नहीं नहीं, ये वो सुपर पावर वाली थर्ड आई नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर होता है। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइनी ऑर्गन होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, और कभी कभी ना इसे बॉडीज थर्ड आई भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट और डार्कनेस के एक सिग्नल से जुड़ा बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर बात करें इस ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड करता है क्या? सबसे पहले तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट करती है ये ग्लैंड, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सपोर्ट करता है, एंड इस वजह से ये हमारे स्लीपिंग हैबिट्स और डेली रिदम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? रिसर्चर्स का मानना है कि स्ट्रक्चर की एवोल्यूशनरी रूट्स कैरोडन साल पुरानी हो सकती है, यानी कि कुछ रेप्टाइल से मिलती जुलती। और इतना ही नहीं, साथ ही एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा कितनी अमेजिंग है एक ह्यूमन बॉडी, जिसे सिर्फ बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर बहुत सारी हिडन चीजें अपने अंदर रखी हुई है। सो नेचर की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी शायद हमारे अंदर ही छुपी हुई है, ये हमें रिसर्चर्स बताते हैं, और शायद इसलिए अच्छे स्लीप को हेल्थ की सुपर पावर कहा जाता है। सो माय डियर स्लीपी आउल्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो अपनी नींद जरूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमें किसी चीज को देनी चाहिए ना, तो वो हमारी नींद है, बाकी सारे काम बाद में। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का दिन, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय बाय।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या आप ही उन लोगों की तरह हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बस सोचते ही जाते हैं? अगर ऐसा है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है आपका ब्रेन एक्स्ट्रा एक्टिव हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं यहाँ पर एक रिसर्च लेकर आई हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें भूला जाता है कि भाई क्यों इतना सोचना है। बेसिकली उनके ऊपर ओवर थिंकर का टैग लगा दिया जाता है। सो लोग जो हर सिचुएशन का प्लान ए बी और सी सोच कर चलते हैं ना, उनका दिमाग कभी कभी रेस्ट मोड में जाना भूल जाता है। और एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग जो ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो रिस्क को जल्दी आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर प्लानिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज उनका जो माइंड है ना वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। सो वो यूज टू हो जाते हैं कि अगर कोई खतरा आएगा ना तो किस तरह से एक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इसका मतलब है क्या। एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रिडिक्ट करने की हैबिट है आपकी। प्लानिंग और डिटेल्स पर फोकस बहुत रहता है। लेकिन इन सब क्वालिटीज के साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो कि आज रियलिटी चेक लेकर आई है। सो भाई साइंटिस्ट ने यहाँ बिल्कुल प्रूव नहीं किया है कि एंजाइटी किसी को ऑटोमेटिकली स्मार्टर बना देती है। इंटेलिजेंस और एंजाइटी दो अलग चीजें हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी जो ब्रेन पॉसिबिलिटीज को अच्छी तरह इमेजिन करता है, वही ब्रेन अननेसेसरी वरीज भी क्रिएट कर सकता है। सो बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कहना चाहूंगी, ओवरथिंकिंग और इंटेलिजेंस ट्विन्स नहीं है, लेकिन कभी कभी एक ही घर में जरूर होते हैं। सो इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा माय डियर स्मार्ट लिसनर्स। और स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वरीज आपकी स्लीप मूड या फिर डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है ना, तो उन्हें मैनेज करना मत भूलिएगा। एक इम्पोर्टेंट टिप थी आज आपके लिए, क्योंकि बेस्ट ब्रेन वही है जो सिर्फ सोचता ही नहीं सुकून भी लेता है। सो सुकून को जरूर ढूंढिए अगर आपकी जिंदगी से कहीं मिसिंग है। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो रेडियो महारानी पर ही शानदार से ट्रैक सुनिए जो खास आपके लिए है। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अंदर कोई डेंजर नहीं है और बाकी पूरा का पूरा ग्रुप उसके पीछे जंप कर देता है। लेकिन अगर पेंगुइन बाहर ही नहीं आया तो इसका मतलब डेंजर है। सो यहाँ पर ना एक बात तो कॉमन है, फ्रेंड्स ना हर जगह सेम होता है, फिर चाहे बात करूँ स्कूल की या फिर बात करूँ अंटार्कटिका की, हर जगह ना आपको इस तरह के दोस्त मिले जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये स्टोरी हमारे लिए ना एक नेचर लेसन लेकर आती है। एनिमल्स भी टीम वर्क और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेते हैं। नेचर की दुनिया में हर टाइनी बिहेवियर के पीछे एक स्मार्ट रीजन होता है। सो अगर कभी भी आपको डिसीजन लेना तो टीम वर्क का ध्यान जरूर रखिए। और हाँ, एक और चीज, फ्रेंड्स हमेशा ऐसे बनाएं जो कभी आपको धोखा ना दे, सो दैट कि आप इस हार्श वर्ल्ड में अच्छे से सरवाइव कर पाए और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

इंडिया में भले ही दो लोग स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मिलाने का काम करती है एक कप चाय। जब हम टपरी पर बैठकर एक कप चाय पीते हैं ना, तो बहुत सारी किस्से कहानियां आती है। इसलिए कहा जाता है कि आइए चलिए चाय पर चर्चा करते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ आज शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज मैं रेडियो महारानी पर आपको ये बताने आ गई हूँ कि जो मसाला चाय है ना, सिर्फ चाय नहीं, इमोशंस अपने साथ लिए फिरती है, और इसलिए एक ग्लोबल रैंकिंग में मसाला चाय को दुनिया की बेस्ट टी वैरायटीज में टॉप स्पॉट मिलने की खबर ने चाय लवर्स का दिल खुश कर दिया है। यस, यू हर्ड इट राइट, मसाला चाय टॉप रैंक पर आई है, और इंडियंस का रिएक्शन भी ना कमाल था जब उन्हें ये पता चला कि मसाला चाय टॉप पर आ गई है। बिकॉज अगर चाय की बात करें ना, तो ये सिर्फ एक बेवरेज नहीं, ये थेरेपी है। और अगर चाय की बात कर रहे हैं तो चले कहानी भी जान ही लेते हैं। अब फिर बात करें, सुबह की शुरुआत हो, ऑफिस का ब्रेक हो, बारिश का मौसम हो, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे हो, हर सिचुएशन में गर्म चाय की प्याली और हर जगह सुकून ही सुकून दे जाती है। सो मसाला चाय में सबसे पहले बात करें, आखिर ऐसा क्या होता है मसाला चाय में? होता है अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी और चाय पत्ती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जो टेस्ट के साथ कम्फर्ट भी देता है। इसलिए लोग बहुत ही दीवाने हैं मसाला चाय के। अगर बात करें इंडिया में, इंडिया में चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, बातें शुरू करने का बहाना है। फिर जो है बात हो रेलवे स्टेशन की टपरी से लेकर घर की रसोई तक, चाय हर जगह लोगों को जोड़ ही देती है। तो बस आज एक एक्स्ट्रा सिप चाय हो जाए और उसके साथ थोड़ी सी मुस्कान भी, और साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर ये अमेजिंग ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंच के आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है कि कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारे हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ, सीजन ट्रांजिशन के टाइम बॉडी में सबसे ज्यादा क्या चेंजेस आते हैं और हमें खास तौर पर इस सीजन में किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: थैंक यू अंजलि। आई एम राधिका नागपाल, आई एम इंटू योगा फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। आई हैव डन माय मास्टर्स इन योगा साइंस। सो आई वुड से जो ये ट्रांजिशन का टाइम होता है, बेसिकली हम गर्मी से मानसून की तरफ जाते हैं, तो गर्मी में बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा हॉट वेदर फील कर रहे होते हो, आपकी बॉडी में अंदर से बहुत हीटअप होता है, गर्मी होती है। बट जैसे मानसून आता है गर्मी रहती है, लेकिन वो क्या ह्यूमिडिटी में चेंज हो जाता है। तो वेदर में क्या आपकी एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप गर्मी से टूवर्ड्स, ना तो आप सर्दी में गए हो लेकिन मॉइस्चर में चले गए, राइट? तो उसके अंदर क्या रहता है कि आपको बहुत ज्यादा आपकी जो इम्यूनिटी जो वीक होती है ना, बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जब सर्दी आती है तभी आपको कोल्ड काफी हिट करता है। जब आप गर्मी से मानसून में भी जाते हो, आप देखोगे बच्चों में, बड़ों में बहुत ज्यादा कोल्ड काफ, ये चीजें, थ्रॉट इन्फेक्शन, ये सब बहुत ज्यादा चीजें हिट कर जाती है, क्योंकि एक तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है उस टाइम पे। दूसरा क्या होता है कि जो ये वेदर है ना वो बहुत इरिटेटिंग होता है। आप क्या है, गर्मी है तो आप एसी में बैठे हो, एसी से बाहर जा रहे हो तो ह्यूमिडिटी में जा रहे हो, तो वो जो ट्रांजिट होता रहता है ना गर्मी सर्दी, गिव्स अ शॉक टू योर बॉडी बेसिकली, ठीक है? वो बॉडी समझ में नहीं पा रही है कि आप गर्मी में हो कि आप सर्दी में हो, तो ये ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। तो इसके अंदर आपको कुछ डेली बेसिस के जो चेंजेस होते हैं, डेली बेसिस की चीजें होती है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आई विल टेल यू इन डिटेल कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं ताकि आपको जो ये वेदर रहेगा ना वो आपको एकदम से हिट ना करे, स्पेशली बच्चों को।
0: जी, थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। तो सुन के जाओ। हेलो,

0: शानाज ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम इस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। सो राधिका जी आज हमारे साथ स्टूडियो में है, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं किस तरह से सीजन में खुद को फिट रख सकते हैं। सो राधिका जी, अगर बात की जाए सीजन की, यानी कि समर टू मॉनसून का जो ये ट्रांजिशन फेज है, इस फेज में इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट क्यों होता है?
1: तो बेसिकली जब हम इस वेदर में इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो जब हम समर से मॉनसून की तरफ जाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, जो मॉनसून सीजन होता है ना, इसमें ह्यूमिड सिर्फ एयर में जो होता नहीं है, हमारे जो हमने खाना बनाया है या कच्चा खाना भी है, राइट, हर वो चीज में वो मॉइस्चर है। तो गर्मी में जितनी जल्दी आपका खाना खराब होता है, उतना ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा ह्यूमिड वेदर में होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज बहुत जल्दी आपके फूड पे स्टिक हो जाते हैं। आपका जो बॉडी के अंदर भी ह्यूमिडिटी लेवल है ना, आपकी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर लूज होता है, और वो लूज तो हो रहा है बट चिपचिपापन आपकी बॉडी पे स्टिक ही रह रहा है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन है, वो आप में कंपेरेटिवली टू एनी अदर वेदर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी में क्या है, गर्मी लगी बट सन इतना तेज होता है कि वो सन की ना एक अपनी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हर चीज को खत्म कर देता है, वो बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा, बट जो ह्यूमिडिटी है ना, वो स्टिक करता है आपकी बॉडी से, आपके खाने से। इसलिए ये वेदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी स्किन की बहुत केयर करो, आप क्या खा रहे हो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। इस वेदर में आप बोलते हो कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मॉनसून सीजन आता है चिपचिप वेदर, हमारे हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा, राइट। तो ये इम्यूनिटी है ना, वो पूरी ओवरऑल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक करता है। इट्स जस्ट नॉट कि आपने आपके स्टमक को इन्फेक्ट करता है, जो आप खा रहे हो सिर्फ उसको इफेक्ट करेगा, वो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को, बिल्कुल सिस्टम ही उसका चेंज हो रहा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप जितना गर्मी से सर्दी में बोलते हैं ना, गर्मी से सर्दी आ रही है, अपना बहुत ध्यान रखो, उतना ही और उससे ज्यादा ही ध्यान जब हम गर्मी से ह्यूमिड के वेदर में जा रहे हैं, रेनी सीजन में जा रहे हैं, हमें उससे भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी, थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये, सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। सो बहुत सारी बातें हैं आज मेरे पास जानने के लिए। तो सबसे पहले तो राधिका जी, ये बताइए, अगर मैं सीजन की बात करूँ, खासकर समर टू मॉनसून ट्रांजिशन का जो ये फेज है, इस सीजन में लोग सबसे कॉमन हेल्थ मिस्टेक कौन से करते हैं जिन्हें अक्सर अवॉइड करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
1: इस टाइम पे लोग सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो है, क्योंकि वो गर्मी में जो खा रहे होते हैं बेसिकली, वो आप मॉनसून वेदर में हमें लगता है कि हम सेम पेस पे चल जाएंगे क्योंकि गर्मी है, राइट। बट गर्मी के साथ वो ह्यूमिड भी ऐड हो रहा है, राइट। जैसे हम गर्मी में क्या ठंडे जूसेस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तला भुना तो मैं नहीं कहूंगी गर्मी में खाना प्रेफर करते, बट हम लोगों को ठंडा पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, राइट। बट जैसे ही वो ह्यूमिडिटी वाला वेदर आता है ना, वो एकदम से, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो चुकी है, बट हमारे खाने का पैटर्न वही चल रहा था क्योंकि सर्दी

0: दवाई नहीं है, तो हमें लगता है कि वो आइसी जूसेस पीना और ये सब चीजें पीना इज ओके टू योर बॉडी, राइट। और उसके अंदर भी आज हम पीने के नाम पे ठंडे में क्या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं
1: जी।
0: अच्छे से अच्छा भी आप ट्राई कर लो, आप नींबू पानी पे चले जाओ जी, कि घर का है, बट नींबू पानी में शुगर है जो कि प्रॉपर पूरी कवरिंग लेयरिंग चढ़ती है उसके ऊपर, एवरीबॉडी नोज दैट। जितना दाना दाना चीनी है वो नेचुरल तो नहीं हो सकती, राइट। तो मुझे लगता है कि लोग गलती यही करते हैं, वो जो एकदम से ठंडा उस चीज को लेकर जाते हैं। इम्यूनिटी वीक है, आपने उसको ओवर बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन चल रहा है, आपने उसको उसके अंदर और ठंडा दिया, जिससे कि आपका एकदम से थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी इसीलिए कैच करता है मॉनसून सीजन में। दूसरी गलती आपकी ये होती है कि आपका जो वेदर जो होता है ना, मैं जैसे बताती कि एसी से एकदम निकले
1: जी
0: और बाहर ह्यूमिडिटी में चले गए, तो वो आपकी बॉडी को हिट करते रहते। ये बहुत छोटी चीजें हैं बट ये बारीक चीजें, अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो इस वेदर में ना कभी भी आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए। आप उसको 24-26 के बीच में रखो ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल अडेप्ट करे, और व्हेनेवर यू आर जस्ट गोइंग आउट आप उस एसी के टेम्परेचर को या तो बंद ही कर दो, पंखे का टेम्परेचर ले लो, ताकि जब आपकी बॉडी ट्रांजिट में जाएगी वेदर के तो एकदम से आपको हिट करेगी। जैसे आप बच्चों के स्कूल्स में देखते हो क्या होता है, एसी स्कूल से निकले उसके बाद वो बाहर जब तक उनकी वैन आई या बस आई या पेरेंट्स लेने आए, वो बाहर ह्यूमिड वेदर में फिर वो एकदम से एसी में बैठते हैं, राइट। बहुत छोटी चीजें जो बच्चों को बहुत ज्यादा हिट करती हैं, हम इसके लिए लीनेंट होते हैं कि कुछ नहीं होता, पर एवरी सेकंड आपके बच्चे को हिट कर जाती है। क्यों स्कूल्स के बच्चों की छुट्टियां होती है इस वेदर में, बारिशों के मौसम में, राइट, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है। तो वो जो ये छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे ना, और एक और चीज मतलब इसका सोल्यूशन ही आप बोल दो, मतलब मुझे इस टाइम पे ये लगता है कि अगर आप कुछ सिरप्स घर के होममेड होंगे ना
1: जी,
0: वो आप बच्चों को दो। मैं कह रही हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे अपने बच्चों पे, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। ठंडी चीजें बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा, ये मौसम हमको सबसे ज्यादा हिट इसलिए करता है क्योंकि हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी बिकॉज ऑफ लेजीनेस ना, अब जैसे कुछ लोगों की आप सोचो हैबिट होगी वॉक पे जाने, ठीक है, बहुत सब लोग जिम नहीं जाते, सब लोग क्लासेस भी नहीं जाते, बट वॉक पे नॉर्मली हर कोई चला जाता है। अब रेनी सीजन में क्या है, बारिशों की जी नहीं जा रहे, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, बाहर नहीं जाया जा रहा, एक तो बॉडी वैसे ही इम्यूनिटी इम्पैक्ट हो रही है, दूसरा जो हम उसको एक्टिविटी या कुछ एक एक्सरसाइज बेसिकली बॉडी को देके उसकी अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कर पा रहे थे वो भी चली गई
1: जी।
0: तो वो दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं खाई, हम दोनों साथ में लेकर चल रहे होते हैं, राइट। तो वो बहुत जल्दी इसलिए हमको हिट कर जाती है। तो ये दो गलतियां नहीं करें, एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड पूरा रखें, क्योंकि हमको लगता है कि क्योंकि चिपचिपचिपन होता है ना, हमें लगता है कि हम उतने प्यास की जरूरत नहीं, गर्मी में क्या वो इतना ज्यादा सूख जाता है आपका गला, आप पानी उठा के पी लेते हो, बट इस वेदर में हमें क्या चिप चिप करके ना, आप उतना ज्यादा लिक्विड इंटेक भी नहीं करते हो, बट इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी हम जो गलती करते हैं, पानी का इंटेक अगर कम हो गया ना, वो आपको ये वेदर बहुत जल्दी हिट करेगा।
2: थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज आपने हमारे लिसनर्स को बहुत फ्रूटफुल बातें बताई हैं जो हमें इस सीजन जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और बातों का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है, लेकिन कल फिर से मिलेंगे आपके साथ, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इस बदलते सीजन में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए पैरासोट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

Angelina. शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ 10:08 हो रहे हैं और इस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस फरीदाबाद शहर का तापमान बना हुआ। बात करें मौसम के बारे में तो अब कुछ दिन मौसम यूं ही खुशनुमा रहने वाला है, गर्मी नहीं सताएगी। जी हाँ, एक बात जरूर है कि 20 जून तक आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान, लेकिन तापमान में बदलाव होने की उम्मीद ज्यादा नहीं है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिलेगी, हालांकि धूप निकलने में हवा से उमस जरूर परेशान करती है। कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है, लेकिन सबका कहना चलिए अभी वीकेंड तक तो अच्छा मौसम ही जाने वाला है, फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी बात की जाए एक वही अच्छा कंट्रोल होते नजर आ रहा है, 74 तक एक वही पहुंचता नजर आया आज शहर भर का, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर से। पहले चर्चा हो रही है फरीदाबाद के गलियारों की, यहाँ बात की जाए दोस्तों, जहाँ आप सब जानते हैं कि बारिशों का वक्त जो है आने लगा है, यानी रेन सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो लगभग 168 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की अब सफाई की जा रही है ताकि बारिशों के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। जहां पिछले दिनों यही चर्चा हर किसी की जुबान पर थी कि सुनिए सरकार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, उनको मेंटेन कर दिया जाएगा तो कम से कम जगहों पर पानी तो ही भरेगा। तो वो बात सुन ली गई है, ऐसा लगता है कि बात सीधे पहुंची है और अब HSVP अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के इन सभी 168 रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम्स को मेंटेन करने लगा ताकि इनको प्रॉपर तरीके से इसकी पाइपलाइन ब्लॉक की जाए, उनको क्लीन किया जाए, साफ किया जाए और बारिशों के दौरान पानी कहीं नहीं भरा हुआ ना दिखे, एटलीस्ट इन लोकेशन पर, और बाकी के लिए भी तैयारियां की जा रही है। बाकी चर्चा होते रहेंगे, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी. यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद.
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर.
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा. और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट. सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों आज सिनेमा के गलियारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को हैं तैयार, कौन से नए स्टार्स लेकर के आ रहे हैं कुछ नई स्टोरीज विद न्यू जोड़ी। कहीं होगा नए गानों का आगाज तो कहीं होने वाला है डायरेक्टोरियल डेब्यू। नई कहानियां नए गाने ट्रेलर टीजर हो रहे हैं आउट और साथ ही साथ कहीं हो रहा है नई कहानियों की अनाउंसमेंट का इंतजार। सिल्वर स्क्रीन से लेकर के ओटी प्लेटफॉर्म तक की किस्से कहानियां आप सबके लिए लेकर के आया हूं, जहां हिंदी पट्टी से साउथ इंडस्ट्री तक की होंगी कहानियां तो कहीं होगा हॉलीवुड का सस्पेंस और थ्रिल का भरपूर डबल डोज। ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा की गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से। सुभाष घई ने ताल चू गया आज या टीज किया है और फैंस पूछ रहे हैं क्या उसे न्यू कास्ट और न्यू डायरेक्टर के साथ बनाना चाहिए। उन्होंने क्लियर किया कि ओरिजिनल ताल के स्टार्स को सीक्वल में वापस लाना प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए फ्रेश फेसेस का प्लान है। घई ने सोशल मीडिया पर ताल अपडेट में पूछा कि क्या वो ताल चू को नए टैलेंटेड डायरेक्टर और नए कास्ट के साथ प्रोड्यूस करें। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। हालांकि बात कुछ ऐसी है, ओरिजिनल कास्ट में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय खन्ना स्टार्स नजर आए थे। अब देखते हैं नई स्टार कास्ट क्या होगी, क्या मास्टर प्लान चल रहा है उनके माइंड में। आपके अकॉर्डिंग नई स्टार कास्ट क्या होनी चाहिए बताइए हमारे व्हाट्सएप 9658968896 पर। वो कास्ट फिक्स नहीं होगी लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा हूँ यार, आपको क्या लगता है कास्ट में कौन होना चाहिए? आपके बताओ फेवरेट्स। बाकी ऐसी चर्चा करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटाए हैं लेकर के शो यानी कि गर्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं अब रश्मिका मंदाना को एस सुब्बलक्ष्मी की बायोपिक में लीड रोल के लिए शॉर्टलिस्ट लॉक किया गया। फिल्म को गौतम तिंदा नुरारी डायरेक्ट कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि रश्मिका ने लुक टेस्ट भी दे दिया है लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है। कहा जा रहा है प्रोजेक्ट एक बायोपिक है जो लेजेंडरी कर्नाटिक सिंगर और भरत रत्न अवार्डी MS सुब्बलक्ष्मी पर बेस्ड है और नयनतारा और त्रिशा के नाम भी कंसिडर किए थे लेकिन फाइनली रश्मिका यहाँ पे अप्रूव हुई। अब देखते हैं कि इसको फाइनल कब अनाउंस किया जाने वाला है और इनके अपोजिट और क्या क्या स्टार कास्ट होने वाले रहेगा इंतजार मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट और फर्स्ट लुक का। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं चलते रहेंगी उस पर एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो,
3: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.
7: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था. पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए. सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए. ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना.
8: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है.
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
9: ए जय माताजी ने हम कहीं ने कहूँ शू के वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर कुछ ऐसी कहानियां जिनका लुत्फ उठाया जा सकता है। राह करुपू माँ है ना, करकटा जैसी कहानियां जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा चुका है, इनका लुत्फ उठाइए। और ये वो कहानियां जो कि इस टाइम अच्छा खासा परफॉर्म करते नजर आई। हाल फाल ही स्ट्रीम ये कहानियां जो अलग अलग जोनों से, कुछ इमोशनल बैकग्राउंड तो कहीं स्पाय थ्रिल कॉन्टेक्स्ट तो कहीं है एक्शन और थ्रिल का भरपूर डबल डोज। ओटी प्लेटफॉर्म पर इन कहानियों का स्ट्रीम उठाते नजर आ रही है फैन, जहां सबसे ज्यादा अगर बात की जाए करपू कहानी को प्यार मिलता नजर आया और दूसरे पायदान पर बात करता हूँ तरकटा के बारे में, ये कहानी ट्रेंड करती नजर आ रही है। बाकी से भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्म इन्फ्लेक्ट। यहाँ बात करते हैं अल्फा के टीजर के बारे में जो हाल फिलहाल सोशल मीडिया धमाल मचाता नजर आ रहा है। आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर स्टार्स इस कहानी में नजर आ रहे हैं। 3 जुलाई को थिएटर्स में ये कहानी रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि एक ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई है जहां लीड करेक्टर को कलंग मशीन बनने की ट्रेनिंग मिली हुई दिखाई जाती है। इसको फ्रेंचाइज का एक नया टोनल शिफ्ट माना जा रहा है। बस ये कि टेल लॉन्च के बाद काफ़ी ऑनलाइन डिस्कशन हुआ और कुछ का कहना है कि यहां रिव्यूज मिक्स रहे। शर्वी का पोस्टर में होना लेकिन टीजर फुटेज में कम दिखना भी फैंस को बीच बात का सब्जेक्ट बना हुआ मिला। लेकिन अभी रिलीजिंग के दौरान ही पता चलेगा क्या शर्वी का कॉन्सेप्ट कम रखा गया या फिर टीजर में थोड़ी सी इनकी झलक कम दिखाई गई। ये तो बॉस रिलीजिंग के दौरान ही पता चलेगा। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सारथी रथ रोको, इधर देखो।
1: क्या हुआ महाराज, कोई इलेक्शन रैली जा रही है क्या?
0: रैली नहीं, ये देखो सड़कों और गलियों में हर जगह कचरा। नगर निगम के इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन सफाई का क्या?
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, वोट तो देना है पर सिर्फ वादों पर नहीं, जो असल में काम करे उन्हीं को।
0: बस यही तो कहना है, वोट उनको दो जो शहर की सफाई को प्रायोरिटी दें,

दरवाजे फिल्म में दो किरदारों में नजर आएंगे, एक जीवन और दूसरा बीमा। प्ले करने वाले हैं सुरेख डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है जिसमें इंश्योरेंस फ्रॉड और कंफ्यूजन बेस्ड ड्रामा सेंट्रल एलिमेंट। फिल्म में संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोपड़ा, विजेंद्र कला भी नजर आने वाले हैं और टीजर की अगर बात की जाए तो वहाँ फिल्म ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है, अब बस इंतजार है इसके ऑफिशियल रिलीजिंग डेट का। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्म नहीं फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली कहानी के बारे में, राग, एक हिंदी क्राइम थ्रिलर कहानी जो कि इस वीकेंड पर स्ट्रीम होने जा रही है। भूत बंगला भी एक ऐसी कहानी है जो कि सिल्वर स्क्रीन के बाद अब ओटीटी पर क्या धमाल मचाएगी ये देखना होगा। गुल्ला का पांचवा सीजन तो मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी, हिंदी टाइटल्स के साथ एक बेहतरीन कहानी रिलीज होने को तैयार। इन कहानियों में किसको ज्यादा प्यार मिलता नजर आएगा देखिए तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा कौन से पायदान पर है कौन सी कहानी। छह कहानियों में रेस में पहले नंबर पर कौन होगा और दूसरे नंबर का स्थान कौन करेगा हासिल पता लगेगा इस वीकेंड के रिजल्ट्स के बाद। बाकी ऐसी चर्चा होते रहेंगे, सो पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
7: आवारा हूँ, आवारा हूँ.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले. सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से, आज के कैलेंडर की। और आज की तारीख है 17 जून। 17 जून की बात की जाए तो आज बर्थडे एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपनी कलम से हजारों लोगों को इंस्पायर किया, अपने विचारों से लाखों लोगों को मोटिवेट करते नजर आए और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राइटर, नॉवलिस्ट, ट्रेवलॉग राइटर, ड्रामेटिस्ट, स्क्रीन राइटर, फिलोसोफर, ऑरेटर और एक्टर, एक इंसान में इतनी सारी पहचान मिलना बहुत कम देखने को मिलता है। आज बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे ही किरदार की जो कि केरला के प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे। कौन है वो, क्या नाम है उनका, बताऊंगा, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार और सुना देता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: ओल्ड हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स, फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए खुला।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्म फ्लेवर। यहां हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे स्टार्स की बारे में जो कि 17 जून 1946 को केरला के पलाड़ डिस्ट्रिक्ट के गांव में जन्मे, जिनका नाम है पीआर नाथन। अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत टेलीकॉम इंजीनियर और प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजर की नौकरी से की, लेकिन उनका असली जुनून था लिखना पढ़ना और दुनिया को समझाना। नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना पूरा समय साहित्य और यात्राओं को समर्पित किया और उनके नाम पर 55 से ज्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, जिनमें नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास और ट्रेवलॉग्स शामिल हैं। पीआर नाथन की सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचनाओं में कन्याकुमारी

मुथल हिमालयम वारे और हिमालय यात्रा से ट्रेवलॉग्स शामिल जिन्हें रीडर्स ने खूब सराहा। साहित्य के साथ साथ उन्होंने मलयालम सिनेमा और टेलीविजन के लिए भी काम किया। ध्वनि शुभ यात्रा के लिए ऐसी कहानियों जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने लगभग 100 रेडियो ड्रामास भी लिखे जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता। उनके बारे में ऐसी और चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: क्या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है?
1: क्या है?

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं आज पी नाथन जी के बारे में, जो कि सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक बहुत ही बढ़िया वेदास उपन्यास और जीवन दर्शन पर उन्होंने दुनिया भर में हजारों लेक्चर्स भी दिए। 206वें प्रेस्टीजियस केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से भी सम्मानित किया गया। उनके नाम 40 से ज्यादा साहित्य और संस्कृत पुरस्कार दर्ज। उनकी रचनाओं में जीवन दर्शन और ना जाने कितने ही मानव अनुभवों की गहरी नजर आती है। एक ऐसे थिंकर और फिलोसोफर के रूप में भी याद किया जाता है जो कि बेहतरीन सोच सबके सामने लाया करते थे हमेशा। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, उसी मुलाकात होगी कल के दिन। सेम टाइम सेम जगह, बातें तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कभी कभी एक हंसी के पीछे छुपा होता है एक लंबा सफर, एक ऐसा सफर जहां आंसुओं ने भी अपना रोल निभाया होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है, और उनका नाम है राजपाल यादव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। साल 1971, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, एक छोटा सा गांव, सिंपल जिंदगी और बड़े सपने, यहीं पैदा हुए राजपाल यादव। उनका बचपन कोई फिल्मी नहीं था, ना ग्लैमर ना स्पॉटलाइट, बस एक आम जिंदगी जहां सपने देखना भी एक लग्जरी होती है। लेकिन राजपाल के अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनकी आदतें, उनकी बोली, उनका अंदाज, शायद वही ऑब्जर्वेशन बाद में उनकी कॉमेडी का बेस बना। स्कूल के बाद उन्होंने थिएटर की तरफ कदम बढ़ाया। यह आसान नहीं था, क्योंकि एक्टिंग को करियर बनाना उस वक्त एक रिस्की डिसीजन माना जाता था, लेकिन राजपाल यादव ने रिस्क लिया। वो लखनऊ के भारतीय नाट्य अकेडमी गए और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचे। गांव से निकला एक लड़का अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था, और फिर मुंबई ने उन्हें बुला लिया। और कैसे बने वो सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

हर कॉमेडियन की लाइफ में एक फेज होता है जहां हंसी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं होती, वो स्ट्रगल को सरवाइव करने का तरीका बन जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन राजपाल यादव के लिए ये शहर पहले एक टेस्ट था। छोटे रोल्स, साइड कैरेक्टर्स और कभी कभी तो सिर्फ एक दो सीन्स। उन्होंने टीवी शोज में काम किया, जैसे मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। उनकी हाइट और उनका यूनिक फेस इंडस्ट्री के टिपिकल हीरो स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होता था, लेकिन राजपाल ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं याद रहने वाला कैरेक्टर बनूंगा। और धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। उनकी टाइमिंग, उनका एक्सप्रेशन और वो नेचुरल कॉमिक फील सब अलग था। स्ट्रगल लंबा था, लेकिन राजपाल रुकने वालों में से नहीं थे। उन्हें बस एक ब्रेक चाहिए था, और वो ब्रेक आया एक अनएक्सपेक्टेड रोल के साथ। कौन सा था वो रोल, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

कभी कभी एक रोल पूरी जिंदगी बदल देता है, और राजपाल यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव के लिए वो जिंदगी बदलने वाला रोल था ना, वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। 2000 का दौर, बॉलीवुड में कॉमेडी का गोल्डन फेज, फिल्म हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, भूल भुलैया, और हर जगह एक नाम कॉमन था, राजपाल यादव। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए, चाहे वो छोटा पंडित हो या एक कंफ्यूज नौकर, हर रोल में उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका इनोसेंस। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती थी, वो सिचुएशन और एक्सप्रेशन से आती थी। ऑडियंस को लगता था ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये सच में ऐसा ही है, और वही उनकी जीत थी। राजपाल यादव अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कॉमेडियंस में से एक बन चुके थे। और आगे क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए और कैसे करा उन्होंने कमबैक, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जिंदगी सिर्फ हंसी का नाम नहीं, कभी कभी वही जिंदगी सबसे टफ सीन्स भी लिख देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। सक्सेस के बाद भी राजपाल यादव की लाइफ में चैलेंजेस आए, कुछ पर्सनल और लीगल इश्यूज ने उनके करियर को स्लो कर दिया। वो फेज उनके लिए आसान नहीं था, इंडस्ट्री भी फास्ट मूव करती है और जब आप रुकते हो तो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन राजपाल ने हार नहीं मानी, उन्होंने वापस काम शुरू किया। छोटे रोल से ही सही, बट काम कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने प्रूव किया कि असली आर्टिस्ट वही होता है जो गिर कर भी खड़ा हो जाए। आज जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस स्माइल कर देती है, क्योंकि कनेक्शन अब भी वही है और कुछ हंसी कभी कभार दिल से आती है। और मेरे ख्याल से राजपाल यादव को देखते ही हम सबके अंदर जो स्माइल है वो हमेशा दिल से आती है। तो करेंगे राजपाल यादव की लाइफ के बारे में और भी बात, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को फेस किया इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ लोग सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, वो लोगों के मूड को चेंज कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं वन एंड ओनली राजपाल यादव की। राजपाल यादव की जर्नी सिर्फ कॉमेडी की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, सेल्फ बिलीफ की और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की। उन्होंने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया, ना ही किसी और जैसा बनने की कोशिश की। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी पहचान बना लिया, इसलिए उनकी कॉमेडी हमेशा रियल लगती है। आज जब भी उनका कोई भी सीन टीवी पर आता है, लोग रुक कर देखते हैं, क्योंकि राजपाल यादव सिर्फ जोक्स नहीं सुनाते, वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो थोड़ी देर के लिए सही मगर जिंदगी की टेंशन भुला देती है। और शायद इसीलिए राजपाल यादव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक रिलीफ है। एंड राजपाल यादव की कोई भी मूवी की बात करी जाए तो वो हमेशा कम पड़ जाएगी, क्योंकि उनके रोल्स हमेशा से अमेजिंग थे, भले ही छोटा पंडित हो या फिर हो भांडिया या फिर हो मारतंड फ्रॉम द मूवी ढोल। तो राजपाल यादव के बारे में थी ये कहानी, और आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए कामयाबी की उड़ान में हम और भी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे, और आप किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हैं आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। Mixing in the house.

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले, रहेगा तो गुलाम ही।

गाना है फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग, और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत, और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी एक बहुत छोटे से अंदाज से और आगे बढ़ी कुछ ऐसे जो इंडिया के लोगों के लिए यादगार बन गई। हाँ, ये वही कहानी है जो हर घर में पहुंची। लेकिन अभी हम सिर्फ शुरुआत की बात करेंगे। सोचिए 19वीं सदी का कोलकाता, शहरों पर भीड़, बाजारों में हलचल और आसपास हर तरफ मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां। लोग क्या करते, नेचुरल रेमेडीज और कुछ लोकल दवाओं पर ही भरोसा करते थे। यही कहीं था एक इंसान जो रोज नए तरीके सोचता, कभी सक्सेस होता कभी फेल और हमेशा आगे बढ़ता रहता। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि उस टाइम शहर में क्योस था, सोशल और पॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड यूनियन एक्टिव, कभी कभी एग्रेसिव भी, काम करना आसान नहीं था। अब सोचिए एक छोटा सा स्टार्टअप, छोटी कोशिशें और आसपास की दुनिया इतनी अनिश्चित, और फिर भी चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और सस्पेंस यही है, क्या वो छोटी शुरुआत बड़ी कहानी में बदल पाएगी, लेकिन कैसे, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा शो में। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी कि एक जर्नी जो बाद में इंडिया की सबसे यादगार ब्रांड को कैसे आगे लेकर आती है। तो बने रहिए मेरे साथ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आज मैं बात करने वाली हूँ उस इंसान की जिसने शुरू किया था कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ और आज बना है एक नाम, एस के बर्मन। हाँ, वही इंसान जिसने बनाया डाबर। सोचिए 1884 का कोलकाता, गलियों में हलचल, बाजार क्राउडेड और हेल्थ फैसिलिटी कम, मलेरिया हैजा जैसी बीमारियां आम थी, लोग रैलीज कर रहे थे लोकल दवाइयों पर और होम रेमेडीज पर। इसी बीच एक लड़का रोज कुछ नया ट्राई कर रहा था, जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन बदलता, कभी सक्सेस कभी फेल, लेकिन हमेशा आगे बढ़ता रहता। वो इतना अलग था कि लोग उसे प्यार से डॉक्टर कहने लगे, लेकिन फर्जी डॉक्टर। उसकी दवाइयां काम करने लगी थी, अफोर्डेबल थी और धीरे धीरे लोगों का उस पर ट्रस्ट बन गया। फिर उसने सोचा क्यों ना दवाइयां दूर दराज के लोगों तक पहुंचाई जाए, और उस टाइम कोई बिग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था, लेकिन उसने मेल ऑर्डर आइडिया ट्राई किया और बिलीव करो या नहीं, ये काम कर गया। और अब नाम की बात करते हैं, एस के बर्मन ने अपने सरनेम और डॉक्टर को मिलाकर बनाया डाबर। सिंपल, कैची और लोगों के दिमाग में रह जाने वाला। धीरे धीरे उन्होंने लैब को ऑर्गेनाइज किया, रोज सुबह उठकर प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, पेशेंट्स की हेल्प करना और नोटिस करना कौन सा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है और कौन सा नहीं। उनकी रूटीन में छोटे छोटे हैबिट्स बड़े इम्पैक्ट ला रहे थे। लोग धीरे धीरे नोटिस कर रहे थे कि डाबर की दवाइयां अलग हैं। क्वालिटी, ट्रस्ट और एसेसिबिलिटी ने ब्रांड को आगे बढ़ाया। बाद में एस के बर्मन के बेटे सीएल बर्मन ने ज्वाइन किया। उन्होंने मशीन्स लगाई, प्रोडक्शन स्केल अप किया और रिसर्च को प्रोफेशनल बनाया। अब छोटे एक्सपेरिमेंट्स बड़े लेवल पर अप्लाई होने लगे और तभी से डाबर का नाम धीरे धीरे इंडिया के हर घर तक पहुंचने लगा। लोग जानते थे कि ये सिर्फ दवा नहीं है बल्कि क्वालिटी और भरोसे का नाम है। और इसी बीच पॉलिटिकल और सोशल एनवायरमेंट भी चैलेंजिंग था। कोलकाता की मार्केट बजिंग कभी कभी क्योटिक भी थे, लेकिन एस के बर्मन ने धीरे धीरे चीजों को मैनेज किया। स्मॉल स्टेप, स्मार्ट डिसीजन और पेशेंस ने धीरे धीरे कंपनी को मजबूत बनाया। अब पिक्चर करो एक छोटा सा लैब, एक क्यूरियस आदमी और उसके एक्सपेरिमेंट, और धीरे धीरे वही एक्सपेरिमेंट एक प्रोफेशनल सेटअप, नेशनल ब्रांड और आइकॉनिक नेम में बदल रहे थे। हर छोटे डिसीजन में एक कहानी थी, हर नए आइडिया में रिस्क था, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें कनेक्ट होने लगी। क्वालिटी, ट्रस्ट और एसेसिबिलिटी यही डाबर को खास बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस टाइम मॉडर्न मार्केटिंग या टेक कुछ भी नहीं था, सब वर्ड ऑफ माउथ और लोगों के ट्रस्ट पर चलता था। आज डाबर का नाम हर घर में है, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, च्यवनप्राश सब फेमिलियर है, लेकिन यह सब शुरुआत हुई थी एक छोटे से लैब और एक इंसान के एक्सपेरिमेंट से। अब वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और हम एस के बर्मन के बचपन में डाइव करने वाले हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और हम बात कर रहे हैं डाबर की, कि डाबर आखिर कैसे बना और किसने बनाया। एस के बर्मन, जिन्होंने बनाया डाबर। सोचिए 19वीं सदी का कोलकाता, नैरो स्ट्रीट और हर तरफ हलचल और छोटे छोटे क्योस। एस के बर्मन के घर में भी यूजुअल लाइफ चलती थी, कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं, सिर्फ क्यूरियोसिटी और एनर्जी हर जगह दिखती। बचपन से ही वो थोड़े से अलग थे, किताबों में, हर्ष में और नेचर में। आप इमेजिन कर सकते हैं, सुबह उठना, नेबरहुड की गलियों में दौड़ना, आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। वो हमेशा नोट्स बनाते, कौन सा लीफ काम करता है कौन सा नहीं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और धीरे धीरे समझने लगते हैं कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। बात करते हैं इनकी स्कूलिंग के बारे में। वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पढ़ाई तो थी लेकिन बच्चों को एक्सपोजर करने का स्पेस नहीं था। मैथ, साइंस, लिटरेचर, हर सब्जेक्ट उन्हें अट्रैक्ट करता था लेकिन सबसे ज्यादा उनका फोकस नेचर और प्लांट पर था, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें सबसे अलग बना देती है। वो बच्चे जो अपने नोटबुक्स में एक्सपेरिमेंट लिखते, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते और कभी कभी अपने छोटे एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई करते, और हाँ, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी। और ये सब था नॉलेज बिल्ड करने के लिए। लेकिन सिर्फ स्कूल नहीं, इनके आसपास का एनवायरमेंट भी इन्हें शेप करता था। कोलकाता की गलियां, मार्केट्स, लोग, हर चीज सीखने का मटेरियल, किसी की छोटी एडवाइस, किसी की ट्रेडिशनल रेमेडी, ये सब उनके माइंड में सेटल हो जाती। और यही वो फेस था जब इन्होंने सीखना शुरू कर दिया कि स्मॉल ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी चीज में बदल सकती है। जैसे कोई छोटे छोटे प्लांट पर ध्यान दे और धीरे धीरे समझे कि कौन सा कैसे काम करता है। उसी तरह इन्होंने बिजनेस और मेडिसिन की दुनिया में स्टेप रखने की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सोच रहे होंगे ये सब छोटी छोटी चीजें क्यों जरूरी है, और छोटी ऑब्जर्वेशन बाद में इनके बड़े डिसीजंस में आई। तो उनके बचपन की कहानी थ्रिलिंग इसीलिए भी है क्योंकि हर दिन कुछ नया होता, कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, कोई प्लांट वर्क नहीं करता, कभी स्कूल प्रोजेक्ट, लेकिन एस के बर्मन हमेशा अलर्ट रहते। छोटे छोटे मोमेंट्स उनकी थिंकिंग को शेप करते रहे। वो बच्चा जो गलियों में दौड़ता, प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता, घर में नोट्स बनाता, धीरे धीरे समझने लगा कि चीजें सिर्फ देख लेने से नहीं सीखती, उन्हें ट्राई भी करना पड़ता है, और यही उनका डेली रूटीन बन गया। तो बस यही शुरुआत थी, आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं डाबर की कि आखिर डाबर कैसे बना। अब उस फेज की बात करते हैं जब डाबर धीरे धीरे ग्रो करने लगा और फैमिली ने इसे संभालना शुरू कर दिया। एसके बर्मन की मेहनत और एक्सपेरिमेंट ने फाउंडेशन रख डाला। एसके बर्मन की मेहनत और एक्सपेरिमेंट्स ने फाउंडेशन रखा, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन का रोल आने लगा और इस काम को संभालने के लिए सामने आए उनके बेटे पूरन और रतन चंदन बर्मन। पूरन का फोकस था प्रोडक्शन, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लैब में मशीन्स और फॉर्मुलेशंस, और वहीं रतन का काम था इंश्योर करना कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सही तरीके से पहुंचे, लोग इसे पसंद करें और डिमांड बढ़े। दोनों के काम का बंटवारा स्मार्ट था, जैसे एक साइड में लैब, दूसरी साइड में मार्केटिंग, और यही कॉम्बिनेशन धीरे धीरे कंपनी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने लगा। अब थोड़ा फोकस करते हैं प्रोडक्ट पर। 1940 के दशक में डाबर ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट बिग प्रोडक्ट, डाबर आंवला हेयर ऑयल। हाँ, ये वही प्रोडक्ट है जो आज भी याद किया जाता है। और इस लॉन्च ने दिखाया कि फैमिली ने सिर्फ कंपनी मैनेज करना नहीं सीखा बल्कि नए आइडिया लाना भी शुरू कर दिया है। स्मॉल इनोवेशन, स्मार्ट मार्केटिंग और कंसिस्टेंट क्वालिटी, यही धीरे धीरे डाबर को लोगों तक ले गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्मन परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, मतलब कुल 7 परिवार एक ही छत के नीचे। अलग अलग रहने का स्पेस था, लेकिन हर रोज मिलकर खाना, डिस्कस करना, बिजनेस आइडियाज पर बात करना, और हर बड़ा मेंबर छोटों को गाइड करता। एक ही घर में कई जनरेशंस, हर कोई अपने आइडियाज लेकर आता, डिस्कस करता, डिबेट करता, और फिर जो बेस्ट होता उसे इम्प्लीमेंट किया जाता। और यही कल्चर स्लोली टर्न इनटू स्ट्रेटेजी, बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटेजी। धीरे धीरे छोटे डिस्कशंस, प्लानिंग और डेली हैबिट्स डाबर की आइडेंटिटी बना गए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्ट इनोवेशन, ये 3 चीज मिलकर बना रहे थे डाबर का फ्यूचर। ये फेज भी इजी नहीं था, पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो भी काफी चैलेंजिंग थे। कोलकाता में टेंशन, मार्केट फ्लक्चुएशन, वर्कफोर्स के इश्यूज, पर फैमिली ने मिलकर हर हर्डल को हैंडल किया। पूरन लैब में एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेशन चेक कर रहे थे, रतन मार्केट में ट्रेवल कर रहे थे, रिटेलर से बात कर रहे थे, सप्लाई चेन मैनेज कर रहे थे। दो अलग दुनिया, एक ही गोल, डाबर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और यही फेज बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब सिर्फ डाबर एस के बर्मन के पर्सनल एफर्ट्स की कंपनी नहीं रही थी, ये फैमिली रन स्ट्रक्चर्ड कंपनी बन गई थी। स्मॉल इनोवेशन और प्रोडक्ट लॉन्चेस ने धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, क्वालिटी मेंटेन करना, न्यू प्रोडक्ट ट्रायल करना, मार्केट रीच बढ़ाना, और यही सब धीरे धीरे डाबर को पहचान मिला रहे थे। और ये तो शुरुआत थी, आगे चलकर कंपनी ने और बड़े स्टेप्स लिए, प्रोफेशनल सेटअप, मास प्रोडक्शन और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का। लेकिन इस फेज की कहानी में हम देखते हैं कि फैमिली कोऑर्डिनेशन प्लस स्मार्ट रूल्स प्लस प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ने डाबर को सबसे अलग बनाया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।
1: See, every day you know I gotta do the bomb to bomb, and everybody asking what's a bomb to bomb, huh? Not so simple, little complicated.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: You don't wanna settle, you move this.

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं डाबर की कहानी के बारे में कि कैसे एस के बर्मन ने शुरू किया और इतना ज्यादा पहचान में आ गया। अब बात करते हैं उस दौर की जब डाबर ने अपने पैरों पर टिकना शुरू कर दिया था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, एस के बर्मन के बेटे पूरन और रतन ने कंपनी को संभालना शुरू कर दिया था। पूरन लैब में फॉर्मुलेशन चेक कर रहे थे, नए एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे थे और रतन इंश्योर करते थे कि प्रोडक्ट्स मार्केट में सही तरीके से पहुंच रहे हैं या नहीं। लेकिन आगे बढ़ना आसान नहीं था। कोलकाता का एनवायरमेंट अभी काम नहीं था। पॉलिटिकल और सोशल टेंशन अक्सर कंपनी के सामने हर्डल्स डालते थे। कभी सप्लाई चेन डिले होती, कभी वर्कफोर्स इश्यूज आते और स्मॉल कंपनीज पर ये ज्यादा असर डालते। लेकिन फैमिली ने मिलकर इन सब को मैनेज कर दिया। धीरे धीरे ट्रायल और एरर से इन्हें समझ आया कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ही ब्रांड का बैकबोन है। धीरे धीरे 1940 में डाबर आंवला हेयर ऑयल लॉन्च हुआ। ये प्रोडक्ट कंट्री में अपनी ही तरह का फर्स्ट प्रोडक्ट था। लेकिन लॉन्च के बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना, मार्केट में इज्जत पाना, प्रोडक्शन स्केल अप करना, ये सब हर्डल्स थे। धीरे धीरे फैमिली का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और उनके स्मॉल रोल्स ने इन हर्डल्स को मैनेज कर दिया। होम डिस्कशंस, मीटिंग, एक्सपेरिमेंट्स और मार्केट फीडबैक्स, ये सब कंबाइन होकर डाबर की आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था, इसके बाद भी कंपनी नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में थी। स्लोली एक्सपेरिमेंट्स और न्यू प्रोडक्ट का साइकिल कंटिन्यू होना, हर प्रोडक्ट लॉन्च के साथ थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा चैलेंज और हर बार फैमिली और टीम ने मिलकर इसको हैंडल किया। स्लोली डाबर का ब्रांड वैल्यू बढ़ने लगा। धीरे धीरे फैमिली से मिली गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड रोल्स और केयरफुल प्लानिंग ने डाबर को एक नाम बना दिया। धीरे धीरे एस के बर्मन की विजन पूरी तरह से प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट होने लगी। यही वो फेस था जब डाबर ने स्ट्रगल को ओवरकम किया और धीरे धीरे एक नेशनल ब्रांड बनाने की ओर एक नया कदम उठाया। स्मॉल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ, फैमिली कल्चर और स्ट्रक्चर रोल से ग्रो हुआ और धीरे धीरे मॉडर्न अप्रोच के लिए रेडी हुआ। तो ये कहानी थी एक डाबर की एक लंबी जर्नी की शुरुआत, जहां छोटे छोटे कदम, फैमिली कोऑर्डिनेशन ने इंडिया की आइकॉनिक ब्रांड बनाने की ग्राउंड वर्क को तैयार कर दिया। बस यही वो फेज था कि डाबर धीरे धीरे नेशनल पहचान बन गया था। आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी आज की कहानी। मैं मिलूंगी आपसे कल, जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। Keep smiling and keep growing.

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक छोटा सा हरा पत्ता जो सिर्फ जुबान पर नहीं इतिहास पर भी रखा गया, जो दरबार से गली तक पहुंचा और आज भी जिंदा है। मैं बात कर रही हूँ पान की। वो कहा है कि जुबान पर रखा पान सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये पहले लोगों को और फिर कहानियों को जोड़ता है।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज कल्चर कारवा की कहानी हमें लेकर जा रही है पान के इतिहास की तरफ। पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं होती, ये वो रस्म है जहां बात शुरू भी होती है और खत्म भी। पान की बात की जाए तो पान की सबसे पुरानी जड़ी हमें हिस्ट्री से मिलती है। कहा जाता है पान कोई नया फैशन नहीं, इसकी जड़ें भारत के इतिहास में 4000 से 5000 साल पीछे जाती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पान का जिक्र मिलता है। चरक संहिता भी ये बताती है कि पान आज का नहीं, ये तो सदियों पुराना है। शायद इसलिए पान को कहा गया डाइजेशन सुधारने वाला या फिर माउथ क्लींजर, साथ ही माइंड बूस्टर। और अगर थोड़ा पीछे और जाएं तो रामायण और महाभारत में पान का जिक्र तंबुल के नाम से मिलता है। मतलब जब हम पान खा रहे होते हैं तो हम सिर्फ टेस्ट नहीं इतिहास चबा रहे होते हैं। और अगर पान की बात की जाए तो पान का इतिहास राजघराने से मिलता है। कहा जाता है मुगल काल में पान सिर्फ खाने की चीज नहीं था, ये स्टेटस सिंबल बन चुका था। फिर चाहे बेगमों के लिए अलग पान की बात की जाए या फिर बादशाह के लिए एक अलग पान, चांदी के चूना दानी, सोना चढ़ा हुआ पान दान और पान बनाने के लिए अलग से ट्रेंड लोग आते थे। वो कहा है कि दरबार में बात से पहले पान आता था, क्योंकि जुबान में मिठास हो तो फैसले भी नर्म हो जाते हैं। मुगल दौर में तो पान का इतिहास देख लिया, लेकिन पान का सफर भारत में कैसे शुरू हुआ इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कल्चर कारवा लेकर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं आप सभी के पास रेडियो महारानी 89.6 FM पर। आज कहानी सुन रही है पान की। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, आज के इंडिया की भी है। मुगल एरा में पान का कनेक्शन तो देख लिया, अब बात करते हैं पान का भारत में सफर कैसे शुरू हुआ। कहा जाता है कि हर शहर ने पान को अपनी बोली सिखा दी। फिर बात की जाए बनारस की तो मीठा पान गुलकंद सौंफ वाला, शादी और संस्कारों में हिस्सा लेने वाला पान।
1: खई के पान बनारस वाला।
0: फिर बात की जाए कलकत्ता की जहां फेमस है फायर पान। थोड़ी ही दूर यूपी बिहार वाला पान। जहां बात की जाए सादा पान, रोजमर्रा की आदत है लोगों की। इतना ही नहीं, बात की जाए अपने हैदराबाद की तो कहा जाता है जर्दा पान, यानी कि मुगल टच वाला पान। वो कहा है कि इंडिया में पान सिर्फ खाया नहीं जाता, निभाया भी जाता है। आखिर इतनी तारीफ के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि पान में क्या खास है, तो बात करते हैं आज कल्चर कारवा में पान की खासियत की। पान के पत्ते में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कहा जाता है ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, साथ ही सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ाता है और इतना ही नहीं माउथ फ्रेश रखता है। लेकिन फिर भी याद रखने की बात ये है कि जर्दा मिलाने के बाद ये सेहतमंद पान भी हानिकारक हो जाता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग सफर रहा इंडिया में पान का। और इतना ही नहीं, मुगल एरा से इंडिया के सफर तक पान ने अपनी एक जगह बना ली। और आज पान और इश्क का एक अलग कनेक्शन देखने को मिलता है। इस कनेक्शन को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आर्यन जी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ बात कर रहे हैं आज पान और इश्क के कनेक्शन की। कहा जाता है पुराने जमाने में पान सिर्फ स्वाद नहीं था, ये इश्क का इशारा होता था। लड़के पान भेजे, लड़के एक्सेप्ट करें तो बात पक्की मानी जाती थी। वो कहा है कि पान के पत्ते पर लिखी थी मोहब्बत और जवाब हाथों से मिल जाता था। ना जुबां की जरूरत थी ना इशारों की, ये पान अपना काम पूरा कर जाता था।

सिर्फ इतिहास ही नहीं, पान का सफर भी बहुत खूबसूरत रहा। पान की अगर बात की जाए तो पान ने हर कल्चर में अपनी एक अहमियत बना ली। कहा जाता है पान इन पॉप कल्चर अपने आप में बड़ा फेमस है। फिर चाहे बात हो, बॉलीवुड ने पान को स्टाइल और स्वैग बना दिया। वो कहा है कि खाई के पान बनारस वाला।

एक कल्चरल अनाउंसमेंट था। और इतना ही नहीं, अगर इसके पीछे की ट्रिविया की बात की जाए तो कहा जाता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीटल लीफ प्रोड्यूसर है। और साथ ही बात की जाए बनारसी पान की, तो बनारसी पान को GI टैग मिल चुका है। और इतना ही नहीं, पान की तारीफ में साउथ ईस्ट एशिया में पान भारत के ट्रेडर्स ले गए, इसीलिए शायद पान को पहले मेडिसिन माना जाता था। वो कहा जाता है कि पान आज भी इश्क फरमाता है। पान से जुड़ी हुई और भी बातें जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया पान के इतिहास की तरफ। वो कहा है कि हर पान की दुकान पर सिर्फ पान नहीं मिलता, वहाँ मिलती है शहर की गॉसिप, पुरानी कहानियाँ और थोड़ा सा वक्त। अब बात करें पान की दुकान की। कहा जाता है पान की दुकान छोटी भले ही होती है, पर वहाँ पूरा शहर मिल जाता है। फिर चाहे बात की जाए पॉलिटिक्स की, प्यार की, गिले शिकवे की और थोड़ी सी जिंदगी की। वो कहा है कि पान की दुकान पर वक्त रुक जाता है और लोग खुद को थोड़ा सा

आज कल्चर कारवा के सफर में हमने बात की पान की कहानी के बारे में, पान के इतिहास के बारे में, पान के स्वाद के बारे में। तो मुझे दीजिए इजाजत, समय हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

शाम होते होते एहसास हो गया कि आज तो वो वाला दिन है जब दो दिन और ऑफिस आना है बस, थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत सारे खुशनसीब लोगों की छुट्टी होती है। मैं नहीं हूँ चीज वो खुशनसीब, दिन भर मैं काम करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, अपने बारे में कभी भी गलत मत बोलना, हमेशा बोलना मैं ही हूँ खुशनसीब। तो मैं भी यही बोलता हूँ, मैं ही हूँ खुशनसीब। और पॉजिटिविटी के साथ आज के शो की शुरुआत की जाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ। और अगले तीन घंटों के लिए आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ। तो देखो मेरा शो क्या है, मेरा शो है पूरा तीन घंटे का पैकेज, जिसमें आप लोगों को फरीदाबाद से लेके दिल्ली NCR से लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया से लेके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सारी अपडेट्स यहीं पर मिल जाएगी, मतलब कहीं और स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़, गाने चलेंगे एक से बढ़कर एक विद मिनिमम एड ब्रेक्स, तो ये तो मेरा वादा है। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, पता है ना सबको, मुझे कोई जानकारी नहीं है उसकी, क्योंकि मुझे फुटबॉल कुछ खास पसंद नहीं है। बचपन में एक बार चोट लगी थी, उसके बाद से मैंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। खैर, फुटबॉल के अलावा इंडिया के मैचेस शुरू होने वाले हैं इंग्लैंड के साथ, जिसमें ODI के मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान भी चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड आप जस्ट इमेजिन करो कि आप अपना फ़ोन चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो और एकदम से ब्लैक स्क्रीन हो जाए, तो आपको डर लगेगा ना, मगर ये ब्लैक स्क्रीन आपके फायदे के लिए होगी। कैसे होगी, कब होगी, सब कुछ बताऊंगा। और आज है महाराणा प्रताप जयंती, जिसकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ उनकी वीर गाथाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। एंड अगर इसी बीच आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप लोग एक नंबर मिला सकते हैं, नंबर है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना, तुझे

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सुबह हसी मेरी शाम हसी है, ये बेमतलब जिंदगी जदों भी तेरे नाम हसी है। हसी है गाने का नाम तलविंदर की आवाज में, और इसी गाने के साथ स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों से। देखो दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में फॉग नहीं चल रहा, वर्ल्ड कप चल रहा है। और वर्ल्ड कप किसका चल रहा है आप सभी को पता है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप में कल मेरा भाई आया हुआ था, ही वॉज लाइक भैया फ्रांस हार गई। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, मतलब देखो इंडिया नहीं खेल रही तो मेरे मतलब का नहीं है ये, क्योंकि चाहे फ्रांस हारे या फिर कोई भी हारे मेरे मतलब का नहीं है। अर्जेंटीना जीती और नॉर्वे जीत गई और पता नहीं बहुत सारी कंट्रीज जीती थी। और फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस में एक प्लेयर है जिसका नाम है एम्बाप्पे, मबाप्पे भी कहते हैं उसे लोग कुछ, मतलब जिनको प्रोनाउंस करना नहीं आता ना, एक तो नाम ही ऐसा है एम्बाप्पे BAPPE, तो ऐसे ही बोलेंगे ना मबाप्पे, तो वैसे इसका नाम एम्बाप्पे है। और इस बंदे की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो ये साल में करीब करीब करीब 1700 करोड़ से ज़्यादा रुपये कमाता है, और मात्र 24 साल इसकी एज है। सोचो जरा 24 साल की एज में 1700 करोड़ रुपए कमा रहा है। और वहीं पर एक और खिलाड़ी की बात करूंगा जिसका नाम हम सभी ने सुना है, और उनका नाम है लियोनेल मेस्सी। और मेस्सी की जब भी बात आती है तो सब लोग बोलते हैं भाई गजब का खिलाड़ी है, क्योंकि इस बंदे ने फिर से एक हैट्रिक कर डाली है सबसे ज़्यादा गोल्स लगाने की, और आई डोंट थिंक सो कि कोई और इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। तो जी ये तो हो गई बात फीफा वर्ल्ड कप की, मगर इसके अलावा और भी चीज़ें चल रही है दुनिया में। जैसे कि एक टेकी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे आप लोगों को काम के दौरान ब्रेक मिल जाएगा। अब वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है करेंगे इसके बारे में बात। एंड अगर आप लोग भी फीफा वर्ल्ड कप के फैन हैं तो आप लोग अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना खैरियत और उसके साथ पल पल दिल के पास, मतलब मिक्स मैशअप है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

अगर आप काम कर करके थक चुके हैं और आप बन चुके हैं अनस्टॉपेबल, तो ये खबर आपके लिए ही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अक्सर क्या होता है, हम लोग ऑफिस जाते हैं, फिर उसके बाद काम करने लग जाते हैं, और काफी बार ऐसा होता है काम करते करते हमें पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि हम लोग काम में इतना ज्यादा मग्न हो जाते हैं। मगर क्या बोलूं, अगर के बीच में ना हमें गैप लेना चाहिए, जो कि हम लोग अक्सर ले नहीं पाते, या फिर काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि गैप लेने का ना टाइम नहीं मिलता, और फिर उसके बाद होती है कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आप लोगों को। और अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि सही वक्त कुछ होता ही नहीं है, जब जागो तब सवेरा। और इसी के साथ साथ अभी एक टेकी ने एक ऐसा मतलब एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसे कहते हैं ब्लैक होल, जो आपकी स्क्रीन पे शुरू हो जाएगा। मतलब आप अगर लगातार काम कर रहे हैं तो बहुत देर बाद वो ऐसा शुरू होएगा जैसे कि आपके स्क्रीन पर कोई लेंस बनाया है, और वो ब्लैक होल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा ताकि आप लोगों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल सके काम से। और बहुत देर तक स्क्रीन चलाना भी ठीक नहीं है। जितने भी लोग हैं जो स्क्रीन पर पूरे दिन काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर है। आप अपने स्क्रीन पर ज़रूर ये चीज़ डाउनलोड कीजिएगा। अभी पूरी तरह से आया नहीं है पब्लिक के लिए, बट जब भी आएगा तब यूज़ करिएगा ज़रूर। ब्लैक होल नाम से बनाया है। और एक और बात बोलना चाहूंगा, इस ऐप की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब हम लोगों को खुद से वो होना चाहिए कि हाँ हमें गैप लेना है, हम लोगों को ब्रेक लेना है। तो अगर आप लोग भी थक चुके हैं तो ब्रेक लीजिए, और ब्रेक के साथ एक गाना चलाऊंगा आप लोगों के लिए। गाने का नाम है वशीकरण। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: The Masters.

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

परम सुंदरी मूवी से था ये गाना और बहुत ही प्यारा गाना था परदेसिया। स्वागत है इसी गाने के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के साथ। एंड एक बात बोलना चाहूँगा और बात सिंपल सी ये है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग ना प्यार कर बैठते हैं इंसानों से नहीं अपने पेट से प्यार कर बैठते हैं। और ऐसा ही प्यार हुआ है इस आदमी को जो कि गुजरात में रहता है, जिसने 1.5 करोड़ की गाड़ी पर अपने डॉग की फोटो चिपका दी। अब आप सोचो कि 1.5 करोड़ की गाड़ी कौन सी है, हम सबको पता है 1.5 करोड़ की कौन सी गाड़ी आती है। डिफेंडर ली थी इस लड़के ने और फिर उसके बाद अपनी पूरी गाड़ी पे रैप चढ़वाया। रैप तो समझते हो गए आप लोग, सब लोग समझते हैं, मैं नहीं समझता था ना पहले इसलिए बोल रहा हूँ। तो गाड़ी पे इसने रैप चढ़वाया और पूरे रैप में इसके डॉगी की फोटो थी। आई डोंट नो पर्पस क्या था, बट गाड़ी अजीब भी लग रही है बट सुंदर भी लग रही है। और पहले तो मुझे लगा AI मेड है, फिर उसके बाद मैंने जब ध्यान से देखा तो पता चला ये AI नहीं है, ये तो रियल है। और ये तो भाई गुजरात का पूरा मामला है। और इस लोगों के कमेंट जब मैंने पढ़े, फिर लोगों के कमेंट्स तो मज़ेदार होते ही है ना, आप सबको पता है लोग कह रहे भाई एक काम करता यार तू छोटी गाड़ी लेके उस पर लगा लेता, इतनी बड़ी गाड़ी लेके तूने ये काम क्यों किया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो प्यार हो तो ऐसा हो, मतलब अपने जानवर से भी प्यार हो रहा है तो इतना अच्छा प्यार हो रहा है कि हाँ वो इंसान गाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा रैप चढ़ा दे रहा है अपने डॉग की फोटो का। तो आप लोग बताइए आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया है, मतलब करने का सोचा भी है क्या? क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करने की सोचूं तो उसके बाद पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा मेरे घर वाले क्या कहेंगे, फिर उसके बाद लोग क्या कहेंगे, फिर उसके बाद सब क्या कहेंगे, ये सब सोचना पड़ेगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ढेर सारे गाने बजेंगे और उन्हीं में से ये गाना वीकेंड वाला है, मगर गाना बहुत ही जोरदार है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: जिन बच्चों को तालू से बचा रहा है, तालू में विस्तार तालू से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े तालू को जन्म देंगे, जिसके जानते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी।
5: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ।

0: जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का। सब मिलकर हम निर्माण करे नव सतयुग से समाज का। जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो। हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: हाँ तो अर्ज किया है.
5: आहो, अर्ज होता है अर्ज.
4: कर रहे हैं आप, सुनो तो.
5: इरशाद,
4: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया.
5: तुम्हारे नंबर पे?
4: हाँ जी.
5: अच्छा,
4: और उन्होंने पूछा क्या?
5: क्या पूछा?
4: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया.
5: क्या बात कर रहे हो?
4: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है.
5: अच्छा,
4: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है.
5: बिल्कुल तुम्हारी तरह. ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है.
4: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे.
5: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है.
4: इज्जत का फालूदा कर दिया यार.
5: बाय.
4: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
5: बाय.

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

आम का सीजन चल रहा है कि नहीं? मतलब एक ऐसा सीजन जिसमें सबको प्यार हो जाता है आम से, और फिर उसके बाद चेहरे पे दाने निकल आते हैं, पीठ पे दाने निकल आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने इसके पीछे के साइंटिफिक टर्म्स नहीं पढ़े, बट हाँ ये मेरे साथ तो ज़रूर होता है कि अगर मैंने आज आम खा लिए तो फिर नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे चेहरे पे, मेरे पीठ पे दाने ज़रूर निकल आएंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी रामलला के दरबार में यानी कि अयोध्या में 1,00,000 रुपए के आम को डोनेट किया गया है। डोनेट नहीं, मीन्स ऑफर किया गया, भेंट किया गया है, भेंट चढ़ाया गया है। और इस आम को कहते हैं मियाज़ाकी मैंगो, जापनीज टर्म है मियाज़ाकी, और जापनीज आम कह सकते हो आप लोग अगर ज़्यादा नहीं बोले हैं हम लोग तो। और इस आम को वैसे कहते हैं एग ऑफ द सन, सन का अंडा। अब ऐसे क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ लाल और पीले रंग का होता है ये पूरा का पूरा आम। और मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पर किलो इसका रेट है। और जिस आदमी ने ये भेंट चढ़ाए है ना ये दो आम, एक्चुअली मैं उस आदमी ने ये पेड़ 2 साल पहले लगाए थे और अब उसके आम बिकने भी शुरू हो गए हैं। आई वंडर कि कौन खरीदता होगा 2.5 लाख रुपए किलो वाले आम। लोग शौक है अपने अपने लोगों के, और क्या पता वो लोग खरीदते होंगे और खाते भी होंगे। अब जस्ट इमेजिन, क्या आप लोग भी ये 2.5 लाख रुपए के आम घर लेकर आए और फिर उसके बाद हुआ ये कि आपका आम निकल गया खट्टा तो आप क्या करोगे? नहीं, ऐसा होता है ना कि आम हम लोग बोलते दुकानदार से भैया मीठे है ना पक्का, और फिर उसके बाद घर जाते तो खट्टे निकल जाते, फिर नुकसान हो जाता है, दुख होता है काफी, पर क्या कर सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चलाऊंगा और वापस आकर बात करते हैं कि देखो पैसों की बात हुई है ना, तो पैसों की बात करेंगे कि आज के 5 करोड़ रुपए आने वाले 30 साल के बाद कितने हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? आप अपना अनुमान लगाइए। और अभी मैं आप सभी के लिए गाना चलाता हूँ, जो ये बैकग्राउंड में गाना बज रहा है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर दूंगा। मैं तेरा हो या अच्छा, मेरी आवाज में अच्छा नहीं लगेगा तो सुनिए गाने को ओरिजिनल आवाज में।

0: तेरा।
1: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
2: दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई तुरेंद्र।
3: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
4: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: भाई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Yo boys, I am singing song. Soup song.

0: सेलिब्रिटी।
1: आज अगर मैं बोलूं कि आप लोगों के पास 5 करोड़ रुपए आ जाए कहीं से, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग भी सोचोगे, हाँ यार 5 करोड़ रुपए अगर आ जाए तो मैं एक घर खरीद लूंगा और फिर उसके बाद कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगा और कुछ पैसे यहाँ लगा दूंगा, एक गाड़ी भी खरीद लूंगा एंड सो मतलब कुछ कुछ कर देंगे, है कि नहीं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। 5 करोड़ आज की डेट में कितनी बड़ी रकम लगती है कि नहीं? और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आज के 5 करोड़ 30 साल बाद कितने हो जाएंगे, जस्ट इमेजिन अगर आपकी एज 25 है और 30 साल बाद आप 55 साल के हो जाएंगे, जो कि एक रियलिटी है कि होना ही है एक दिन, तो उस टाइम आपके 5 करोड़ की वैल्यू कितनी रहेगी? और मैंने अनुमान लगाया था कि इसकी वैल्यू करीब करीब 1 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, मगर सुनने में बड़ी 5 करोड़ रुपये बहुत बड़ा फंड लगे, बट 30 साल बाद आपके ये 5 करोड़ ऑलमोस्ट 87 लाख रुपए के बराबर हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि 87 लाख में जितना सामान आएगा ना उस टाइम, वो आज 5 करोड़ रुपए में आता है। मतलब सोच लो, उस टाइम घर भी नहीं खरीद सकोगे आप 87 लाख में, मतलब 5 करोड़ में आप घर भी नहीं खरीद सकोगे आज से 30 साल बाद। हाँ, सबको पता है महंगाई बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अगर 5 करोड़ की बात करें तो आज से 30 साल पहले की अगर हम लोग बात करें 1995 में, उस टाइम 5 करोड़ आज के 500 करोड़ के बराबर लगता था। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा और अपने जितने भी आपके अगर दोस्त के दादाजी वगैरह हैं, अगर कोई भी दादाजी आपके एरिया में है, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि 1995 में अगर उनको 5 करोड़ रुपये दे दिए जाते तो वो लोग क्या करते। दादाजी छोड़िए, अपने पेरेंट्स से ही पूछिएगा, क्योंकि उस टाइम अगर 5 करोड़ मिल जाते ना किसी को तो उनके तो लाइफ सेट हो जाती, उनकी ही नहीं उनके आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों की लाइफ सेट हो जाती। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ऐसी खूब सारी बातें लेकर आऊंगा। और हाँ, इंडिया में मानसून की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई, आज भी बारिश नहीं हुई, कल तो हुई थी ना, मंडे को भी हुई थी, बट अभी मानसून की रफ्तार धीमी बताई जा रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है,
1: और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेन करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
2: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

मॉनसून एक ऐसी टर्म जिसको कुछ लोग सावन कहते हैं और सावन ही कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बारिश का महीना कहते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मॉनसून का इंतजार तब से शुरू हो जाता है जैसे ही गर्मी शुरू होती है इंडिया में। एंड मॉनसून का वेट तो मैं हमेशा से करता हूं क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, मगर मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो गई है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैं स्वागत बार बार करता रहूंगा आप लोगों का जब तक इस मॉनसून का स्वागत ना हो जाए। तो बता दूं आपको, जो ये बे ऑफ बंगाल है और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं अरब सागर, अरेबियन सी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन बना पड़ा है जिसकी वजह से मॉनसून है ना वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। वैसे आमतौर पर ये मॉनसून आप सभी को पता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। केरला में 2 तारीख को दस्तक दे दी थी इसने और फिर उसके बाद हमारी तरफ बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 20 तारीख तक आ जाएगा, मगर अभी बोला जा रहा है कि 27 तारीख तक मॉनसून दिल्ली एनसीआर पहुंचेगा। और बता दूं आपको, यूपी के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है बट अभी दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। और मॉनसून के साथ साथ आती है कुछ कुछ और चीज़ें जैसे कि ट्रैफिक जैम और उसके साथ साथ थोड़ा सा जल भराव भी हो जाता है हमारे एरिया में। और जल भराव का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता, जल भराव के बहुत सारे अन्य रीजंस होते हैं जैसे कि हम लोग भी तो क्या करते हैं, हमारे अंदर सिविक सेंस तो है नहीं, हम लोग खा के कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं और फिर मॉनसून में क्या होता है, बारिश से पानी के साथ बहते हुए प्लास्टिक जाके जम जाता है नाली के अंदर और नालियाँ भर जाती है, फिर उसके बाद पानी होता है ओवरफ्लो। तो ऑल टोटल हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और वैसे भी इस बार मॉनसून के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है सरकार, और जैसे कि हमारा सबको पता है गुड़िया चौक के पास कितना जलभराव होता था, तो वहाँ पर भी नई नालियाँ डाली जा रही है, नए सीवरेज डाले जा रहे हैं, क्लीन करा जा रहा है सब कुछ। और सेक्टर फरीदाबाद के किसी भी सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पर भी ये सब काम हो रहे हैं। और बस यही प्रे करूँगा कि आने वाले टाइम में जल्दी से ये सारा काम खत्म हो जाए ताकि मॉनसून में हम सबको राहत मिल पाए। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, ब्रो दवी की आवाज़ में आप सभी के लिए गाना, और इस गाने के बाद करते हैं और भी बातें।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझे

में ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

सो मैं अगर बोलूं आप लोगों से कि हाउ वॉज आज की गर्मी, तो आज गर्मी भले ही थी और नहीं भी थी, यानी कि 36-37 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा, मगर ठीक ठाक था मौसम। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। 6:53 ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरे स्टूडियो क्लॉक में, और इसी के साथ साथ बस थोड़ी ही देर बाद, यानी कि 25 मिनट मान लो, इसके बाद ना आपको सूरज दिखाई नहीं देगा। किरणें दिखाई दे रही होगी अभी भी, हो सकता है सूरज भी ना दिखाई दे रहा हो अभी। और इसके बाद क्या होगा आने वाले दिनों में, होगा ये कि आने वाले कुछ दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं है, और आपको बारिश देखनी अगर है तो वो है इस संडे नहीं, अगले सैटरडे और संडे, क्योंकि बोला जा रहा है कि मॉनसून तब से शुरू हो जाएगा, यानी कि 27 और 28 तारीख से मॉनसून दस्तक दे देगा दिल्ली NCR में। और बस इसी चीज़ का तो वेट है, इस चीज़ का इंतज़ार तो मैं बहुत सालों से करता आता हूँ। मतलब देखो, हर साल ना मॉनसून जब भी आता है तो हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं, और इस बार मॉनसून थोड़ा सा लेट है। साल 2024 की बात करूँ तो 22 तारीख को मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, और अगर साल 2025 की बात करूँ तो मॉनसून थोड़ा सा जल्दी आ गया था। लेकिन इस साल अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि मॉनसून 27 तारीख को आ ही जाएगा। ये तो मौसम विभाग का कहना है कि आ जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना हर्ष लिखारी की आवाज में, बेबे बापू ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अगर मैं बोलूं कि वीकेंड पे जो आप लोग पार्टी करते हैं और अगर आप उसमें अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो उतना नुकसानदायक नहीं है, ऑल्दो नुकसानदायक तो है बट उतना नुकसानदायक नहीं है जितना ये तीन ड्रिंक्स आपको नुकसान पहुंचा रही है। कौन सी है वो तीन ड्रिंक्स, बताता हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। हम लोग अक्सर स्वीटेंड बेवरेजेस पीते हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं जूस पी रहे हैं। मैं मार्केट वाला जूस नहीं बोल रहा, मैं पैकेट वाले जूस की बात कर रहा हूँ। उसको कभी पलट के देख लेना, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर आप सोडा पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक के नाम पर भी बहुत सारी चीनी वाली मीठी वाली ड्रिंक्स आती हैं, तो अगर आप ये सब पीते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लिवर को हिट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखो इनमें ग्लूकोज होता है, इनमें फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज की वजह से मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्पाइक हो जाता है और फिर जो लिवर में जाके फैट प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ऐसी बात मैं खुद से अपने आप से बना के नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर ने खुद बताई है और डॉक्टर सौरभ सेठी हैं, इन्होंने एक पूरी वीडियो बना के डाला है कि लिवर को सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली चीज़ अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल बिल्कुल ख़राब करती है मगर उससे ज़्यादा ख़राब करती है सोडा, एनर्जी ड्रिंक और स्वीटेंड बेवरेजेस। तो अगर आपके घर में या फिर आपके आसपास कोई अगर आपके दोस्त हैं जो ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उनको ये बात ज़रूर बताइएगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक को एक लिमिट कर दीजिए। देखो हर रोज़ पीने की चीज़ नहीं है ये, कभी कभी पी रहे हो तो ठीक है। और बता दूँ आपको, फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारक यही है, सबसे बड़ा कारण यही है, और इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आकर बात करते हैं कि अगर आपको फरीदाबाद महंगा लगता है ना, तो इससे भी महंगी जगह है इंडिया में और उसका नाम है बेंगलोर। कितना महंगा है करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेन करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: दिन में
1: आज का दिन
0: बकवास है।
1: नहीं, बकवास नहीं है, दिन तो बहुत अच्छा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को फरीदाबाद महंगा लगता है तो रुको, आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, फरीदाबाद से महंगी भी बहुत सारी जगह है। एंड यू विल फील लकी कि आप लोग फरीदाबाद में रहते हैं। और देखो, फरीदाबाद से ज्यादा महंगा क्या है, बैंगलोर। एक लड़की है जो बैंगलोर में रहती है, उसने अपना पूरा का पूरा खर्चा दिखाया। उसने कहा मैं जॉब कर रही हूँ बैंगलोर में और लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सैलरी तो बहुत अच्छी है, तू बचा भी अच्छा लेती होगी। तो फिर उसने बताया कि मेरा 36,000 रुपये तो किराया है, और महीने का किराया 36,000 रुपये है, उसके अलावा ग्रोसरी का बिल भी है। अब आप लोग बोलोगे 36,000 वाली जगह पर रहना ही क्यों है, छोटे फ्लैट पर रह लो। तो एक्चुअली में छोटे फ्लैट में ही रह रही है, ये 1 BHK के फ्लैट में रह रही है और उसका किराया दे रही है 36,000 रुपये। अब देखो, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सबको चलाने के लिए 5,000 रुपये अलग से लगते हैं, फिर बिजली और हाउस हेल्प के 4,000 रुपये अलग से लगते हैं, फिर किराना और मतलब ग्रोसरी और फूड डिलीवरी ऐप्स का टोटल खर्चा इनका करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये महीना हो जाता है, और आने जाने का भी 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है, और उसके अलावा फिटनेस पर 5,000 रुपये अलग से खर्च करती है ये लड़की। तो देखो, ये हो गया इनका पूरा का पूरा खर्चा जो कि करीब करीब 60,000 रुपए के बराबर है। तो मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आप बैंगलोर जैसे एरिया में रह रहे हो ना, तो आपके लिए 1 लाख रुपए की सैलरी कुछ भी नहीं है। और वहीं पर अगर फरीदाबाद की बात करूं तो 1 लाख रुपए की सैलरी डिसेंट मानी जाती है कि नहीं। चलिए, अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाना मनिंदर भुट्टर की आवाज में ला रहे, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाइवा इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: ध्वनि भानुशाली की आवाज में था ये गाना थैंक यू गॉड। और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा और वो ये कि जल्दी ही शुरू होने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20I और इसके लिए मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देखो इंग्लैंड में जब इंडिया जाएगी तो कुछ कमाल ही करके आएगी। और ये मैचेस शुरू हो रहे हैं 1 जुलाई से, वेंसडे का दिन है 1 जुलाई को। और बता दूँ आपको एक और बात, देखो T20 मैचेस शुरू हो रहे हैं पहले, फिर उसके बाद ODI होंगे। तो T20 मैचेस 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद जो ODI होंगे वो शुरू होंगे 14 जुलाई से। तो ODI कुछ खास होता ही है, 5 T20I है, 3 ODI है। और ODI इसलिए खास होता है क्योंकि उसमें होते हैं विराट कोहली, नन अदर देन विराट कोहली और नन अदर देन रोहित शर्मा, द हिटमैन शर्मा। मतलब आप लोगों को फिर से उन लोगों की बल्लेबाजी देखने को मिल जाएगी। और खैर अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की, तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान भी तो चल ही रहा है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि देखो मैं तो बस प्रे करता हूँ कि सभी लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाए ताकि हम लोग अच्छे से ये मैचेस देख पाएँ। और अगर मैं बात करूँ पहले ODI की, जो कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हुआ था, जो कि अभी 13 जून को हुआ था, वो डकवर्थ लुइस की वजह से, कौन जीता था, इंडिया जीती थी डकवर्थ लुइस की वजह से। मतलब 25 ओवर का ये मैच कर दिया गया था और इंडिया 7 विकेट से ये मैच पूरी तरह से जीत गई थी, जहां पर हमारे एक खिलाड़ी जिनको कहते हैं विराट कोहली वो नहीं खेल पाए थे। तो चलिए अभी आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसी और भी ढेरों बातें होती रहेंगी मगर उसी के साथ साथ गाने भी चलेंगे। तो सारे दिल टूटे आशिकों के लिए एक गाना ये सुनिए, इस गाने को रेडियो महारानी में, नाम नहीं लूंगा गाने का, खुद ही सुनिए और खुद ही पहचानिए।
1: थोड़ी विस्की थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, yeah।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: मैं लड़की की
5: आशा इस पंजाब

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

मैं अक्सर बात करता हूँ कूड़े की, मतलब कि कूड़ा फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अगर बात करूँ NIT 1 की, तो उसमें भी बहुत सारे एरियाज हैं जो कि आप लोग जानते होंगे वहाँ पर कूड़ा है। अगर मैं बात करूँ सेक्टर 15 की, तो ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, मगर उसके आसपास वाले एरियाज में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपको गंदगी कूड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ सराय साइड की, तो हर जगह ऑल ओवर फरीदाबाद कूड़ा बढ़ता जा रहा है। देखो, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, वो हमेशा से आ रही थी, मगर कुछ लोगों की आदत इतनी गंदी हो गई है, वो लोग कूड़ा उठाएंगे और सड़क के किनारे छोड़ जाते हैं। फिर एक जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ अगर कोई इंसान देखता है, तो दूसरा इंसान भी वहीं डालता है, और फिर दसवां इंसान भी वहीं डालता है। फिर उसके बाद ऐसे साइकिल चलते जाती है और फिर वहाँ पर कूड़ेदान बन जाता है। तो बस मैं यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरा फरीदाबाद स्वच्छ हो जाए, क्योंकि स्वच्छ रहेगा फरीदाबाद तो फिर स्वस्थ रहेगा फरीदाबाद। और इसी प्रण के साथ मुझे दीजिए इजाज़त यहाँ से जाने की। मिलूँगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आएगी गीत वेदेश कुमारियाँ, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर, प्यार भरे गाने लेकर। और मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि काश मैं भी ऐसी प्यार भरी बातें आप लोगों के साथ कर पाता। नो डाउट, अभी जितनी बातें करी वो अच्छी थी। और कल शाम को मिलते हैं फिर से 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। लेकिन

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क। कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती हैं, जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो, और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, ना कोई शिकायत है, ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

है और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मैं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती हैं। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो रात के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिर की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में. जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं.
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

और रेट्रोइश के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई, दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का

0: कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

पल पल दिल के पास, और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां, और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है, और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाएं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जानें। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है तुझे.

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

होना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़छी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़छी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम का बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: नाना
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप
2: मुस्कुराई। कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।
3: मस्त बहा।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: नहीं कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
0: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जस हित हरिवंश विचारिके मनुज देह गुरु चरण गहि, सकहि तु सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है। यदि भजन नहीं हो रहा तब निशार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो, जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े, माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े। हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी थरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या, बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा है इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश मंत्र नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी